आप सुन रहे हैं बिग मानो 6.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग मानो 6.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Big 106.2.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Millennials Unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

वही पुरानी नई कहानी, बचपन से जवानी। देखे थे पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी।

ये रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना समझना कहाँ।

0: खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो।
1: Big 106.2

बिग मिलेनियल वीकेंडर, दिस इज मी शिरिन ऑन बिग 106.2। तो आज एक और बार मैं शनिवार की सुबह को, आपकी शनिवार की सुबह को जो है बहुत ही मनोरंजक बनाने के लिए आई हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट सम ग्रेट सॉन्ग्स फॉर यू ऑल एंड आई हैव ऑल्सो गॉट सम ग्रेट ट्रिविया, ग्रेट थिंग्स टू टॉक अबाउट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आज शनिवार को हम बात करेंगे अबाउट द मूवीज, बॉलीवुड मूवीज जिसमें कि एक्ट्रेसेस ने नेगेटिव रोल प्ले किया एंड दे रियली हिट इट आउट ऑफ द पार्क, दे वर रियली फैबुलस इन इट। और ये है मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस जिनको हमेशा नॉर्मली जो है हीरोइन वाला रोल हमेशा दिया जाता था, लेकिन इन मूवीज में इन्होंने जो है बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव शेड्स लेके आए और इन मूवीज को इन्होंने एकदम अमेजिंग और मजेदार बनाई हैं। तो आई थिंक यू ऑल विल डेफिनेटली एग्री विथ मी, मुझे लगता है कि आप लोग जब सुन रहे हो इसको तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सही बात है। और कौन सी मूवीज, अगर आपको कोई मूवीज याद आती हैं ये भी आप मुझे बता सकते हो। यू कैन जस्ट राइट टू मी ऑन हमारे बिग का जो पेज है, इंस्टा पेज 106.2 बिग FM, या फिर मेरा जो पेज है hustler_shirin, आप लोग मुझे बता सकते हो। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मूवी, लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं ये गाना।

द बिग मिलेनियल वीकेंडर, मैं हूँ शिरिन ऑन बिग 106.2। तो आज जो है सैटरडे की सुबह को सुहाना बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ कुछ सुहानी बातें लेके। तो सबसे पहले तो मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करूंगी जिसमें कि एक्ट्रेस ने नेगेटिव रोल किया, दैट इज गुप्त। मुझे लगता है दिस मस्ट बी द फर्स्ट मूवी दैट मस्ट बी कमिंग टू द माइंड्स ऑफ एवरी वन हु लिसन्स टू दिस टॉपिक, है ना। तो गुप्त में काजोल ने जो नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर प्ले किया है उसकी बहुत चर्चा हुई। लॉट ऑफ पीपल स्पोक अ लॉट अबाउट इट बिकॉज पूरी मूवी तो एक तो पहले तो पूरी मूवी गोटेड थी। उसमें मतलब कोई ऐसा सीन नहीं था जिसमें कि धड़कनें तेज नहीं होती थी, और उसके ऊपर से काजोल की एक्सप्रेशंस, काजोल का जो प्रेजेंस और वो सब था। और बाय एंड ओनली वी कम टू नो कि काजोल इज द मेन नेगेटिव शेड, द विलन कैरेक्टर इन द मूवी। अंटिल देन कितने सारे लोगों के ऊपर हमें डाउट हुआ था, इंक्लूडिंग मनीषा कोयराला, एक्चुअली प्रेम चोपड़ा थे उसमें, और इतने सारे कैरेक्टर्स थे एंड एवरीबॉडी सीम टू बी द नेगेटिव पर्सन, द किलर, बट अल्टीमेटली काजोल वॉज द किलर। तो मुझे लगता है कि गुप्त मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बट इफ इन केस यू हैव नॉट वॉच्ड इट, यू मस्ट वॉच इट। ऑल्दो मैंने आपको सस्पेंस ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी द मूवी इज

Big Millennial Weekender, this is me Shirin on Big 106.2. तो हम जो है बात कर रहे थे about the actresses who played negative roles in Bollywood Millennial movies. और उसमें जो है उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि फिर ऐसा लगने लगा कि बस उन्हीं को काम देते रहो negative roles के. तो मुझे लगता है अगली movie जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो होगी खाकी. खाकी movie में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐश्वर्या राय भी negative role, negative shade वाला role play कर सकती है. ऑब्वियसली उसमें जो मेन नेगेटिव कैरेक्टर थे वो अजय देवगन थे, लेकिन ऐश्वर्या राय ने जो उसमें प्यार का धोखा दिया अक्षय कुमार को अजय देवगन के प्लान के हिस्से के हिसाब से, वो बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था. और मुझे लगता है कि जितने भी अक्षय कुमार फैंस हैं, इंक्लूडिंग पीपल लाइक मी, मैं भी अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा दिल टूटा था. और इसलिए टूटा था ज़्यादा क्योंकि अक्षय कुमार के साथ साथ ऐश्वर्या राय भी मेरी फेवरेट है और उसी ने उसका दिल तोड़ दिया. तो आई थिंक दिस मूवी वॉज रियली लाइक उसके गाने, ऑब्वियसली जो दिल डूबा गाना है आज भी चलता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं होती है. बट आई थिंक आपको ज़रूर खाकी देखनी चाहिए. तो वीकेंड में अगर कोई प्लान नहीं है तो खाकी देखिए और मुझे बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी. लेट्स गो अहेड एंड लिसन टू द नेक्स्ट वन.

The Big Millennial Weekender, this is me Shirin, Big 106.2 पर, और जो है मैं आपको बता रही हूँ ऐसी मूवीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आपने देखी नहीं है, या अगर देखी है तो रिविजिट करनी चाहिए, जिसमें कि नेगेटिव शेड्स के जो कैरेक्टर्स हैं उसको एक्ट्रेसेस ने प्ले किया है और बहुत ही बढ़िया काम किया है. तो अगला जो मेरा सजेशन है वो होगा द मूवी पुकार. पुकार की जब बात करते हैं तो एवरीबडी ओनली थिंक्स ऑफ के सरा सरा सरा, है ना. मुझे लगता है सबके मन में ये गाना आया होगा. बट देन यू नो दिस मूवी इज नॉट जस्ट अबाउट द सॉन्ग द डांस, प्रभुदेवा एंड माधुरी डांसिंग टुगेदर. दिस मूवी इज ऑल्सो अबाउट द फैंटास्टिक एक्टिंग दैट माधुरी दीक्षित डिड इन दिस मूवी. माधुरी दीक्षित को जो है नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर दिया है. ऑब्वियसली शी कम्स टू नो दैट यू नो वॉट शी डिड वॉज रॉन्ग, शी रियलाइजेज एंड ऑल ऑफ दैट हैपन्स. लेकिन तब तक जो प्यार की जलन की वजह से उन्होंने अनिल कपूर को ही बहुत बड़ा जो है धोखा दे दिया, बहुत बड़ा चकमा दे दिया, दैट वाज फैंटास्टिक द वे शी डिड इट. बस उनकी जो छोटी छोटी एक्सप्रेशंस, माइन्यूट माइनर एक्सप्रेशंस, नुआंसेस, ये चीज़ें जो है ना, आई मीन दिस इज पॉसिबल ओनली बाय लेजेंडरी एक्ट्रेसेस लाइक माधुरी दीक्षित. सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड पुकार, यू मस्ट वॉच ओवर दिस वीकेंड. लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग.

बिग मिलेनियल वीकेंडर, मैं हूं शिरिन आपके साथ बिग 106.2 पर। तो ऐसी मूवीज जिसमें एक्ट्रेसेस ने नेगेटिव शेड्स प्ले किए हैं, इस मूवी के बारे में अगर मैं बात नहीं करूंगी तो ये लिस्ट जो है इनकम्प्लीट लगेगी। और ये मूवी है ऐतराज़। ऐतराज़ में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी एक मूवी भी रिलीज हो सकती है, उसके बारे में बात हो सकती है, जिसमें कि देर इज़ एन इश्यू एट अ वर्क प्लेस जहाँ पे मेल इज़ बीइंग क्या बोलूँ, उसको जो है बहुत इंटिमिडेट फील किया जा रहा है, उसको करवाया जा रहा है, उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है बाय अ फीमेल बॉस, एंड दैट इज़ द कैरेक्टर प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की शुरुआत की जो मूवीज थी उनमें से एक मूवी थी ऐतराज़, और मुझे लगता है कि फॉर द स्टार्ट्स शी रियली डिड अ फैबुलस जॉब। इट वाज एज इफ शी इज मेड टू डू दैट रोल। और मुझे लगता है उसके अलावा उन एक्ट्रेस दैट इज प्रियंका चोपड़ा के अलावा किसी और को अगर ये रोल दिया जाता, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ प्योरिटी उस रोल में कौन कितना ला पाता, बट देन आई रियली थिंक दैट दिस वॉज रियली फैबुलस। और इसमें ऑब्वियसली करीना कपूर जी जो हैं उनको लगा था कि इस मूवी में उनकी भी बात होगी, लेकिन उनसे ज्यादा प्रियंका चोपड़ा जी की बात हो गई और उसमें वहां पे कैट फाइट का टॉपिक भी शुरू हुआ, जो कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है आज के लिए। तो इफ यू गाइज हैव नॉट वॉच्ड ऐतराज, जाइए देखिए और बताइए मुझे कि प्रियंका चोपड़ा का जो वो नेगेटिव शेड है, डिड यू लाइक इट और नॉट। लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग।

0: Millennials Unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Orkut scraps, MSN chats, and Bollywood bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

द बिग मिलेनियल वीकेंडर, मैं हूँ शिरिन एंड ऑन बिग 106.2। और मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, द लिस्ट ऑफ मूवीज वेयर एक्ट्रेसेस हैव प्लेड नेगेटिव रोल्स एंड हिट इट आउट ऑफ द पार्क, इनमें से एक और मूवी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, एक और एक्चुअली बहुत सारी और हैं, लेकिन सिंस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, एक और मूवी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, दैट वुड बी कौन। जी हाँ, उर्मिला मातोंडकर। वेल, द मूवी हैड मेन कैरेक्टर्स उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी, और इसका जो थ्रेड है, मुझे तो समझ नहीं आता कि रामगोपाल वर्मा ने ये थ्रेड कैसे समझाया होगा। बस कुछ नहीं, कोई आता है दरवाजे पे और उसको जो है अटका के रखना है, और उसको डर लगता है कि ये विलन है, इसको डर लगता है कि वो विलन है, और मेनली हम जो मूवी को देखते हैं वी रियली फील दैट मनोज बाजपेयी ही विलन है। उनकी जो जिस तरह से वो उसमें एक्टिंग करते हैं, द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, एवरीथिंग इज ऑफ अबाउट दैट गाय। लेकिन फिर एंड में जब समझ में आता है, ओ माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड, दैट वाज रियली अमेजिंग। और सबसे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अमेजिंग एक्सप्रेशन जो उर्मिला मातोंडकर के फेस पर आता है, जब पूरा सब कुछ हो जाता है, इन द एंड समबडी रिंग्स द बेल अगेन, शी लुक्स आउट ऑफ द पीपल एंड देन लुक्स बैक एट द कैमरा, दैट लुक रात को सो नहीं पाऊंगी मैं, आज बिल्कुल नहीं सो पाऊंगी। आप लोग देखिए कौन एंड लेट मी नो कि आपको मूवी कैसी लगी। यू कैन डीएम अस ऑन हमारा जो बिग का पेज है, विच इज 106.2 बिग, एंड मेरा जो पेज है असलर अंडरस्कोर शिरिन। हमें बताइए कि आपको मूवीज कैसी लगी, सजेशंस कैसी लगी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग।

0: रंधावा के बाद दिस वीक ऑन नंबर 38 धमाल 4 से राइट हियर प्लेइंग इन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. मानसी नाउ मूविंग ऑन टू 37 मूवी दैट आई हैव रेकमेंडेड इनफ. आई लव लव लव द मूवी एंड आई ऑल्सो लव द म्यूजिक ऑफ दिस मूवी. स्पेशली ये जो किशोर दा का गाना इन्होंने रिक्रिएट किया है. शनाया कपूर गौरव आदर्श इस हफ्ते ऑन नंबर 37. नाउ वेल टॉकिंग अबाउट अनदर ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड 90s का गाना दैट्स बैक हमारी जिंदगी में थैंक्स टू पति पत्नी और वो दो. यस, प्रजापति पांडे आयुष्मान खुराना फॉरेस्ट ऑफिसर हैं इस मूवी में. प्रयागराज में ये रहते हैं एंड बहुत डिवोटेड हैं टू हिज वाइफ जो वामिका गब्बी है. शी प्लेज अ जर्नलिस्ट इन द मूवी. उसकी बेस्ट फ्रेंड निलोफर विच इज रकुल प्रीत आयुष्मान के ही डिपार्टमेंट में काम करती है एज अ वेट. एक दिन प्रजापति को एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर मिलता है अपने ऑफिस में. उनकी कॉलेज फ्रेंड चंचल हु नीड्स हिज हेल्प एंड टू रेस्क्यू हर फ्रॉम अ मेसी सिचुएशन ही प्रिटेंड्स टू बी चंचल्स बॉयफ्रेंड. आई विल नॉट गिव यू एनी स्पॉयलर. इट्स अ फन फन फन वन टाइम वॉच ओवर द वीकेंड. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिकमेंडेशन you definitely can enjoy Pati Patni aur Wo Do. aur is gaane ki placement in the movie kamaal hai is hafte on number 36
1: the big Bollywood countdown the part of the big weekend big 106.2 the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Bhai, wo kuch 2-4 hazar rupaye ki zarurat thi apne.
4: Do ya char.
3: Char.
4: Kab tak wapas aayega?
3: Yahi, yahi. 4-5 din mein?
4: Char ya.
3: 5.
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन. ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
1: द बिग बिंज विद सिड सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 37.

अरिजीत सिंह की आवाज, साथ में सुनी दी चौहान एंड शाहिद कपूर का फेवरेट गाना फ्रॉम द एल्बम कॉकटेल 2 दिस वीक ऑन नंबर 31, दैट वाज तुझको. Right on Big 106.2, playing you the top 40 biggest hits with the big Bollywood countdown of Mansi. In fact, if you want to go and check out ke top 5 hits kya hai is hafte ke, you can head to our Instagram page 106.2 Big FM. Filhal, moving on to gana number 30, a movie jiska millennials badi bekarari besabri se intezaar kar rahe hain, Awarapan 2, releasing on the 14th of August.

0: में सुबह शर्मा 19 साल बाद शिवम पंडित के रूप में इमरान हाशमी इज मेकिंग अ कमबैक. वी लव द ओजी वन. वी कांट वेट फॉर आवारापन टू. इसी के साथ ऑन नंबर 29 वी गॉट शाश्वत सचदेव अरिजीत सिंह एंड इरशाद कामिल विद
1: गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से रहना भरे.
0: Stay right here. This is the Big Bollywood Countdown.
2: Number 30.

This week on number 24, Shashwat Sachdev, Arijit Singh from Dhurandhar 1. Right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood. While you're enjoying the top 40 biggest hits of the week, do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM it is. Moving on to gana number 23, which is again from a Huma Qureshi movie, Baby Do Die Do. And bahut tareef is movie ko mili hai. Alpha ke ye saath release hui thi initially, bahut kam screens mile the, but वर्ड ऑफ माउथ से इतनी तारीफों के बाद इसके स्क्रीन्स भी जो है वो बढ़ा दिए गए हैं. दिस इज हुमा कुरैशी एंड साकिब, जो उनके भाई हैं, उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से पहली मूवी, ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड. ओरिजिनल गाना शक्ति का. On number 23 this week. Moving on to 22, we've got

0: And of course, a brand new entry on number 21. We've got Bhai Tera Star Hai. Brand new upbeat Hindi commercial comedy movie se kaha ja raha hai. And ye movie jo hai agle weekend release hone wali hai, starring Raghav Jugal. अमित त्रिवेदी ने म्यूजिक क्रिएट करा और क्या रिक्रिएट किया ये गाना ओरिजिनली फ्रॉम गुलाम. ब्रांड न्यू एंट्री है सीधा नंबर 21 पे.
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
2: चलो चले अलराज.
1: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 23.
4: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो. जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल. लगता है डर बस इतना वो मेरा अहम शक्ल ना हो.

0: George, Devnagi, Palak Mushal, and of course, OG Jatin Lalit, recreated for Bhai Tera Star hai this week on number 21. Playing in the top 40 biggest hits of the week, you have Big Bollywood Countdown, Mahu Mansi, and moving on to Gana number 20. बड़ा मन था यार मेरा ये मूवी थिएटर में देखने का, बट आई समहाउ कुडंट वॉच द मूवी इन द थिएटर. डायरेक्टेड बाय द मास्टर स्टोरी टेलर इम्तियाज अली, ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर बाय एआर रहमान. द मूवी इज डेफिनेटली बीइंग स्टिल क्रिटिकली अक्लेम्ड, एंड दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शर्वरी एंड नसीर साहब की तो बहुत ज्यादा तारीफ जितनी की जाए वैसे कम है, बट लोग कह रहे हैं कि उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज उन्होंने मैं वापस आऊंगा में दी है. इस हफ्ते फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा ऑन 20. Can't wait. The movie will be streaming on Netflix, and usually movie arrives on OTTs exactly after 8 weeks. So 12 जून को ये मूवी रिलीज हुई थी, तो लेट्स सी कि अब ये आएगी कब नेटफ्लिक्स पे. जैसी आएगी आई एम गोना लीव एवरीथिंग एंड वॉच मैं वापस आऊंगा. एंड ऑफ कोर्स आई विल से सभी की तरह जिन्होंने ये मूवी थिएटर में मिस कर दी है कि यार देखनी चाहिए थी. इसी के साथ ऑन नंबर 19 जो मूवी हम थिएटर में देखना चाहते थे बट रिलीज ही नहीं हुई थी. Jasmine Sandler's Noora Sisters with this one from Dhurandhar 2 this week also number 19 pe.
1: This is the Big Bollywood Countdown.
2: All the music I love.
1: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Where's your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip? Posting pictures from a trekking adventure, or FaceTiming your family from a remote island. Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E& UAE app or our website. T's and C's apply. E&. Go for more.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 20.

मिस्टर रहमान का मैजिक एंड आई मस्ट से शाश्वत सचदेव का भी मैजिक कमाल है. एवरी सिंगल सॉन्ग, चाहे वो धुरंधर वन से हो या पार्ट टू, इज सो वेल थॉट ऑफ एंड सो ब्यूटिफुली मेड. चाहे वो रिक्रिएटेड गाने हो, जस्ट लाइक दिस एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग कवाली, किसी ने सुना नहीं था इसका ये वर्जन भी आएगा इस हफ्ते ऑन नंबर 15. Top 40 hits of the week. Stay right here. This is the Big Bollywood Countdown. I'm Mansi. Number 16.

बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, बट पीपल वर रियली प्रेजिंग आयुष्मान खुराना एंड वामिका गब्बी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो इस हफ्ते नंबर 10 पे. Playing in the top 40 biggest hits of the week. Ye hai Big Bollywood Countdown. Hope you're enjoying your weekend. Main hoon Mansi. Do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM it is. And main har hafte kehti hoon ki top 40 mein se 5-6 gaane to Dhurandhar franchisee ke hi hote hain. Why not? Shashwat Sachdev ne itna kamaal kaam kiya hai, chahe wo original gaane ho ya phir recreated ones like this on number 9. प्यार करना आसान होता है, निभाना मुश्किल. एंड वही सिखाती है कॉकटेल 2. इट्स अ ग्रेट टेक ऑन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स इस हफ्ते ऑन नंबर 8.

fun. विशाल मिश्रा, राजशेखर, रूलिंग द चार्ट. इसी के साथ टाइम फॉर मीन आर से बाय बाय. हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीकेंड. डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हेलो टू मी. आई एम मानसी टॉकिंग. आई टॉक टू यू ऑन वीकडेज. पांच एंड ऑन विद अ बिग थ्रिल. यू स्टे राइट हियर. नंबर 106.

0: Countdown.
1: इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट्स.
0: Countdown.
2: Here we go.
1: सिर्फ Big 106.2 Beat of Bollywood पर.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of

इट्स टाइम फॉर द बिग बिंज. ये जनहित में जारी इन पब्लिक इंटरेस्ट शो है, द बेस्ट दैट आई कैन डू, एंड दैट इज के यू नो वॉच स्टफ बिफोर यू डू, बिकॉज एवरी सिंगल सेकंड इज सो इंपॉर्टेंट, सो हार्ड अर्न्ड ओवर द वीकेंड, के हम चाहते ही नहीं कि आप एक भी सेकंड वेस्ट करो. एंड स्पेशली यू नो दैट स्क्रोलिंग, कुछ देखें, मन तो कर रहा है यार लेकिन पहले रिव्यू देखूंगा, पढ़ूंगा, कुछ दोस्तों से पूछूंगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है. इफ यू जस्ट ट्रस्ट द बिग बिंज विद मी सेड, आज हम लोग एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं. ऑफकोर्स द रूल इज दैट वी ओनली टॉक अबाउट OTT content, right? So it could be films, shows, and today it's going to be a film. It's a film that I was really waiting for. Netflix ki ek movie hai starring Dhai Karod ka Heart of Sunny Deol and Akshay Khanna. Ikka ki hum log baat karne wale hain. Achha kitna hai, kitna bura, kya achha hai, kya bura, dekhe nahi dekhe, should we stream it or skip it? All that coming up right here on The Big Binge on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: You're listening to The Big Binge with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

The Big Binge is back and इस हफ्ते हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इक्का ऑन नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स को लग रहा था कि ये उनका तुर्क का इक्का होने वाला है, तो हर बार लगना ही चाहिए. सनी देओल का बिग ओटीटी कोर्टरूम थ्रिलर स्टारिंग अक्षय खन्ना एज वेल. और हाँ, 2.5 किलो का हाथ इज बैक, बट इस बार वो लीगल फाइल्स को उठा रहे. इट डजंट नीड 2.5 किलो का हाथ इंस्टेड ऑफ उखाड़ोइंग अपरूटिंग हैंड पंप्स दिस टाइम. सनी देओल प्ले करते हैं अर्जुन मेहरा, रिस्पेक्टेड लॉयर हैं जिन्होंने कभी कोई केस लूज नहीं किया है. मिलॉर्ड ही इज, दैट इज वाई कंसिडर्ड टू बी एन इक्का. And he gets pulled into defending a murder accused that he may not even believe in. Akshay Khanna is that murder accused. And opposite him, Akshay Khanna comes in with full menace. Honestly, he looks like what he looks like in the trailer. Rehman Dakeet Pro Max. मतलब उनकी जो ठुड्डी है वो छाती से चिपकी रहती है फेविक्विक से, निकलती नहीं है. अबे हर एक, it's okay, you found like a success formula. But हर एक फ्रेम में you don't need to be Rehman Dakeet ना. So it's like a parallel universe जहाँ पर तारा सिंह भी हैं, Rehman Dakeet, and they become and तारा सिंह has become a lawyer. Courtroom drama है, moral dilemma. It's quite strong. Star power, shouting, silence, and a lot of objection, Your Honor वाला energy. More about इक्का. The film on Netflix that everybody is talking about coming up. What are the good things, bad things? And finally, the verdict, whether you should stream it or skip it, according to me, coming up right here on The Big Binge with me, Sid.

द बिग बिंज और आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इक्का स्टारिंग सनी देओल अक्षय खन्ना. इट्स टाइम टू टॉक अबाउट सम गुड थिंग्स एंड ट्रस्ट मी आई हैड टू वर्क रियली हार्ड टू फाइंड सम गुड थिंग्स अबाउट दिस फिल्म. द बेस्ट थिंग इज द फेस ऑफ वैल्यू राइट. सनी देओल वर्सेज अक्षय खन्ना साथ मिलकर ऑटोमेटिकली फिल्म को एक वजन तो मिलता है बिकॉज दोनों एक्टर्स दे नो हाउ टू होल्ड अ सीन विदाउट यू नो ट्राइंग टू हार्ड. कुछ होते हैं ना लोग जिनको कैमरा एब्सोल्युटली लव्स देम, ये क्लीशे पे बिल्कुल खड़े उतरते हैं. एक तो सनी देओल और दूसरे अक्षय खन्ना. सनी ब्रिंग्स दैट ओल्ड स्कूल इंटेंसिटी. नथिंग इज दैट इट डज गेट अ बिट टू ओल्ड स्कूल certain points, but I promise myself to give you the good things. Sabse pehle, restrained hai in some places, which would be difficult for him. Explosive in others, which comes naturally to him. Whereas Akshay has got that calm, dangerous unpredictability that makes you keep watching. And the courtroom setup also gives that film like a strong hook, right? What happens when a lawyer is forced to defend someone jisko wo personally suspect karte hain? So, ये जो मॉरल डिलेमा वाली जो बात है दैट यू नो काइंड ऑफ थिंक कि ये तो होता ही होगा लॉयर्स के साथ और जब होता है तो हाउ डू दे एक्चुअली डील विद इट. सो द मॉरल कॉन्फ्लिक्ट इज एक्चुअली द फिल्म स्ट्रॉन्गेस्ट आइडिया बट दैट्स द थिंग वो आइडिया लेवल पे ही रह जाता है. एंड इफ यू इंजॉय क्लासिक हिंदी लीगल ड्रामाज विद बिग बूमिंग इमोशंस फैमिली स्टेक्स एंड स्टार ड्रिवन मोमेंट्स देन इक्का इज गोना गिव यू इनफ टू चू ऑन. बस हो गया, मेहनत कर ली मैंने. ये अच्छी बातें हैं इस फिल्म के बारे में. जो नॉट सो अच्छी चीजें हैं कमिंग अप इन जस्ट अ वेल. कीप इट लॉक टू द बिग बिंज विद मी सिड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दूं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

टिक्कास, सनी देओल, अक्षय खन्ना की फिल्म. आई टोल्ड यू सम गुड थिंग्स अबाउट दिस फिल्म, एंड नाउ फॉर द नॉट सो गुड थिंग्स. प्रॉब्लम जो है ना इक्का के साथ इज दैट इट डजंट ऑलवेज फील एज शार्प एज इट्स प्रेमिस. एंड द अदर थिंग इज दैट यू नो बहुत ही ज्यादा मुझे तो एटलीस्ट इट्स काइंड ऑफ I feel it's really belongs in the 80s, not even the 90s, like the mid 80s. Ghayal ghatak banne ki bahut zyada ghatak koshish ho rahi hai is film mein, and you know it's sometimes leans too heavily on old school drama, right? Loud courtroom beats, star power pe zyada focus hai instead of the really fresh writing, right? And I think as an audience hum log evolve ho chuke hain finally from that Sunny Deol dhai kilo ka haal, from that you know, especially inside a courtroom that thoda sa nuanced feel aana chahiye. For example, Akshay Khanna had done Section 375. So, I was expecting a bit more subtlety, less screaming. Lekin, that's why I was a bit disappointed. Legal twists jo aate hain iske andar, they're not always as clever as you want them to be. And kaafi baar aisa lagta hai that the film wants to be a tense thriller, lekin ho nahi pa rahi hai. And it also wants to kind of keep giving Sunny Deol fan service moments because he's a bit old school. So, I think he would have insisted ke हर एक फ्रेम में देर शुड बी सनी देओल. सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ स्लिक मॉडर्न अनप्रेडिक्टेबल कोर्टरूम मास्टरपीस, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू फील लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट. इट्स गॉट पावर बट नॉट ऑलवेज प्रिसिशन, राइट? एंड प्रिसिशन इज एज इंपॉर्टेंट एज पावर व्हेन इट कम्स टू कोर्टरूम ड्रामा. एटलीस्ट दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज. यू माइट हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. कमिंग अप नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मी, शुड यू स्ट्रीम इट और स्किप इट, इक्का नेटफ्लिक्स का. कीप इट लॉक टू बिग 106.2. दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड.

जाना है ना जाओ, मेरे साथ शर्त लगाओ, ये ये ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये ये ये करके

जम के मजाले ऑफ योर वीकेंड एंड मजे का पार्ट है द बिग बिंज विद मी सिड। आज का सफर बस यहीं तक। आज का शो आपको कैसा लगा? यू कैन ऑलवेज यू नो लीव योर बुकेज एंड ब्रिक बैट्स ऑन आवर सोशल्स। वी आर 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर हैंडल ऑन इंस्टाग्राम। एंड इन केस देयर इज अ शो दैट यू वांट मी टू रिव्यू और इट कुड बी एन ओटीटी मूवी एज वेल, यू कैन ऑलवेज लीव योर रिकमेंडेशन एज वेल। कोई ऐसा आता है ना, बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं, ओटीटी मूवीज होती हैं, जिनके बारे में आप सोच तो रहे हैं फॉर अ वाइल कि यार देखे नहीं देखे, मिक्स्ड रिव्यूज हैं। इफ यू वांट लीव दैट जिम्मेदारी ऑन मी, आई मेक श्योर दैट यू डोंट इवन वेस्ट अ सिंगल सेकंड ऑफ योर हार्ड अर्न टाइम over the weekend. So if you got a recommendation for me to review, more than welcome. Leave a comment on our Insta. You can DM us, 106.2 Big FM, that's our handle on Instagram. I'm Sid Sid, SIDSETS, taking your leave. I'm going to see you a Monday morning. Don't forget the show that gets you up and running on a weekday from 7 to 11. It's called The Big Breakfast. Till then, enjoy the rest of your weekend. Bye-bye.

0: Hollywood.
1: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ।